0: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Your number one radio station. You're listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: You chase the dunya and its pleasures.

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोन सा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: मेमोरी रखी है, उस मेमोरी की जॉगिंग हम नहीं करते, उसकी एक्सरसाइज नहीं करते, इसीलिए फिर हमारी मेमोरी दुखी हा वाली सारी कहानियां रह जाती हैं और जो काम की चीज़ है वो नहीं पहुंच पाती। ठीक, सो इस थॉट के साथ आज का ये शो शुरू करते हैं जी। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। और आज के शो में हम उम्मीद करेंगे कि अगले शोज़ का जो रन डाउन मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो शो होने वाला है वो है द 10 डेज ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, 10 दिन की खामोशी और अपने साथ जो हमने लोनलीनेस बिल्कुल नहीं थी, सॉलिट्यूड में हमने क्या खोया क्या पाया उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन सर आंखों पर, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी मुझे की पर्सनली और उन्होंने कहा सर उसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर, और कुछ ने कहा जी अभी तक आपने नहीं बताया, तो हमने कहा चलिए पूरा 1-2 घंटे का शो जैसे हम पहले किया करते थे, किसी भी चीज़ का टॉपिक बना लेते थे और फिर उस चीज़ का उसके बारे में हम सैर हासिल गुफ्तगू किया करते थे। ठीक है, जैसे सैर भी कराएंगे और साथ कुछ ना कुछ हमें हासिल भी होगा, मुस्तफीज करेंगे जी, इस्तफादा हासिल करेंगे चीज़ों से, बल्कि इस्तफादा हासिल करना ठीक नहीं, इस्तफादा करेंगे उसका यही मतलब है फ़ायदा हासिल करना। तो यही वो गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, तो और गलतियों से याद आया क्योंकि अभी आपकी कॉल्स नहीं, जब मैं लंबी कोई बात कर रहा हूँ तो आपकी कॉल्स मेरे पास स्टूडियो में नहीं होती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आप लोग दम बखुद होकर कभी कभी खुद बखुद सुन रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपके लिए कोई एक खूबसूरत सा ट्रैक से हम शुरुआत करते हैं जी आपके, पहले तो आपको जगाया हमने जागो वाले लाल वाले बैंड से, जिनके हजरत जो थे वो यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे, प्रोफेसर साहब ने क्या कमाल उनकी गायकी है, क्या गला है और क्या कमाल सिंगर हैं, उनको दोबारा भी इंशाल्लाह आपके हुजूर पेश किया जाएगा ताकि हुजूर समझते हैं आप, तो उसके आपको हाजिर करके, हाजिर से है हुजूर, तो उससे आपके पेश किया जाएगा और आप लोग भी साथ साथ इंजॉय करेंगे। आज का ये खूबसूरत शो नाम है जी लिसनर्स ऑफ रेडियो आज़ाद के, जिनके साथ मिलके हमने फ़न किया, 14 साल गुजारे और रेडियो आज़ाद ने 14 साल गुजारे, बोल के लब आज़ाद ने तेरे ने उससे ज़्यादा टाइम लिया और आप लोगों के साथ रहा। तो आज के पहले लकी कॉलर ऑफ द डे ये फ़ोन लाइन के ऊपर है, इनसे बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई मेहरबान है हमारे साथ रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर।
1: अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद जी।
0: जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
1: I'm fine अल्हम्दुलिल्लाह, I'm the one who's driving and calling।
0: सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अपना तारुफ हवा बहार की है।
1: Okay, no I'm not driving right now।
0: ठीक है,
1: so is any topic today?
0: कोई आज तो फन लिसनर शो है, आपका जिम्मे इसको आपके जिम्मे ये है कि आप करेंगी बात और हमारे जिम्मे ये है, यानी हम I am responsible for creating fun out of whatever you're gonna say or add or contribute। जी
1: okay, it's an important question and I think it's going to help a lot of people and you have said this number of times and I have heard it that I want to know in more detail the concept of tough love and how to apply it, because I see a lot of families around me, they have kids and sometimes they don't know how to handle it, and so how to apply it basically, like what they should do it, and you can give some examples and explain it more।
0: ठीक, सवाल ये है कि टफ लव का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे किया जा सकता है ताकि इसके रिजल्ट्स भी आए और चीजों को और रिश्तों को बेहतर हैंडल किया जा सके, ये सवाल है।
1: स्पेशली इन रिलेशन टू किड्स।
0: बिल्कुल ठीक,
1: लाइक पेरेंट्स टुवर्ड्स किड्स।
0: बिल्कुल ठीक, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग योर वर्ड। जब मैंने आपसे कहा था कि आप आइए जब भी वक्त हो कॉन्ट्रीब्यूट करें और उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है,
1: yes and I'm changing my name to and I can refer, you can always I can recognize, you can recognize myself as an Azad show fan honestly।
0: nice of you, theek hai to Azad show okay. fan aapka naam rakh denge, theek hai,
1: yes
0: and
1: yes.
0: Iska matlab hai ki it makes, iske bare mein angrez pata hai kya kehta hai, because you know aapki language zyada english hai, ye jo bhi aapne kaha hai na ki aap apna naam change karke Azad show fan kar dengi, to iska अगला आंसर ये होना चाहिए मेरी तरफ से, इट मेक्स टू ऑफ अस। ठीक है, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अ ग्रेट स्टार्ट। आज का ये चेंज, एक तो नाम रखा गया जी, एक व्हाट्सएप का नंबर चेंज हुआ, देखते हैं आज और क्या क्या चेंज हो रहा है। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
2: नमस्ते आजाद जी, कैसे हैं आप?
0: जी, आपने अपना नमस्ते नहीं चेंज करना है, ये बहुत खूबसूरत है।
2: आई कैन डू इट बट
0: नहीं नहीं अभी तो
2: हैबिट
0: 5000 साल से चल रहा है तो क्यों चेंज करना है
2: या
0: जी
2: मैं ये कह रही थी कि रिश्ता अगर किसी से बनाना है तो उसमें झुकना नहीं चाहिए
0: अच्छा
2: गलत रिश्तों में झुकना कुछ गलत
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही
2: नहीं है और कभी कभी झुक भी जाओ तो वो भी बुरा नहीं है पर हमेशा अपना रिश्ता बनाए रहना चाहिए जिंदगी की जो परीक्षा है उसमें कोई अंक नहीं होते हैं मिलते हैं लेकिन आप उसको हृदय से लगाते रहिए जोड़ते रहिए समझते रहिए याद करते रहिए तो उसी में आप पास हो जाते हैं
0: बिल्कुल ठीक बहुत खूबसूरत बात है ये याद रखिएगा एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा अभी एक आइडिया दिया मुझे इस बात से कि रिश्ते में कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिश्ते में कभी झुकना नहीं चाहिए और फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी अगर झुक भी जाए तो उसमें कोई कबात नहीं है देखिए जब तक ये झुकने झुकाने का काम चलता रहेगा ना ये कि टांग किसने अपने ऊपर रखनी है हु इज़ वेयरिंग द पैंट्स आपकी मर्जी पे चलेगा या इनकी मर्जी पे चलेगा जब तक हम इन चक्रों में रहेंगे ना ये हमें गोल चक्कर ही है रिश्तों का जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे ये विशेष साइकिल है हमें अपनी सोचों में समझना चाहिए जैसे उन्होंने कहा रिश्ता रिश्ता का मतलब है धागा ठीक है जी वो जो टूट नहीं रहा है वो जो रिश्तों का धागा है वो दो बंदों से उसका एक साइड है दूसरी साइड है और उसके बीच में जो भी चीज़ है इसको पकड़ के रखने को रिश्ता कहना चाहिए कोई भी झुकना झुकाना जब हम आएगा ना जब आप एडजस्टमेंट्स करके किसी काम में कोई बंदा बेहतर है मैं आपको बता देता हूँ मैंने अपने रिश्ते 20-30 साल से कैसे मेंटेन किए हुए हैं कैसे उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता लोग कहते हैं जी रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन लोगों में होते हैं जिन्हें कोई कॉन्शियशियस नहीं होते जो कॉन्शियस नहीं होते जिनके अंदर कोई फोर साइटेडनेस नहीं होती जो एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते जो एक दूसरे की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को नहीं समझ पाते उनको ये प्रॉब्लम होता है तो जब रोल डिफाइन हो जाते हैं जब दो बंदे ये फैसला कर लें कि उन्होंने रिश्ता रखना है चाहे ये घर में माँ बाप हैं चाहे ये खून के रिश्ते हैं दिल के रिश्ते हैं काम के रिश्ते हैं जब ये पता चल जाए कि रिश्ता रखना है तो पहले ये फिगर आउट कर लेना जहन में बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब है दो बंदे जो एक होने वाले हैं इसका मतलब है दो अलग डायरेक्शंस नहीं हो सकती डायरेक्शन एक होगी दो बंदे पहले मिलकर फैसला कर लें क्योंकि वो कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है वो जागे हुए हैं माइंडफुल हैं कि क्या चाहिए और क्यों आ रहे हैं और जब भी इनको को लगे कि कोई गड़बड़ हो रही है रास्ते अलग हो रहे हैं कोई मसले पैदा हो रहे हैं तो दे ऑलवेज रिवर्ट बैक टू बेसिक्स ये जिस इंस्टीट्यूशन से मैं तालीम हासिल करके आया हूँ उनमें सबसे जो अच्छी चार बातें मैंने सीखी हैं किसी दिन बाकी भी बातें बताएंगे उसमें से एक था जब भी आप गुम जाएं डायरेक्शन लेस हो जाएं चीज़ें सुकून ना आए खुशी ना आए रिजल्ट ना आ रहे हो ऑलवेज गेट बैक टू बेसिक्स सारा कुछ आसान हो जाएगा कि किस लिए ये रिश्ता बनाया था कहाँ जाना था बात क्या हुई थी क्या लिखा गया था क्या बोला गया था क्या समझा गया था वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है जो पहले थी अगर बंदे वही हैं तो रास्ते में मोनोटनी हो जाती है रास्ते में लोग अपने अपने काम में गुम हो जाते हैं और रिश्ता भूल जाते हैं तो ये इसको आपने याद रखना है कि मकसद क्या था तो अगर ये झुक जाए वो झुक जाए इसको झुकाना है उसको उठाना है इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये हमेशा इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव या एक के आगे दूसरा बंदा जब हम ये करते रहेंगे ना हमें कभी समझ नहीं आएगी दो बंदे मिलकर इंडिविजुअल कॉन्शियस जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है एक इंसान की और दूसरे की मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी आप अगर न्यूरो साइंस को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी खुदा ने इंसान के अंदर ब्रेन वेव्स रखी हैं एक है कलेक्टिव ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट वो आपको दो बंदे एक बंदा जब किसी एनवायरनमेंट में जाता है ना तो उसका जो दिमाग है

हम उसके साथ बस ऑटो पायलट पे चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आपको उसको कंट्रोल करना और उसको समझना और उसके मुताबिक ऑपरेट करना सिखाती हैं। तो जब आप ये करना सीख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रिश्ता होश में रहकर बनाया जाता है। टकराने से किसी आदमी से टकरा जाने से गले नहीं मिलते आप, उससे आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो हम रिश्तों में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। हमारे रिश्ते जो है ना, ये उसके लिए क्या वर्ड मैंने बनाया था, मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का नाम हमने रिश्ता रखा हुआ है। हम टकरा जाते हैं एक दूसरे से, उससे कभी कुछ अच्छी चीज़ निकल आती है, कभी कोई बुरी चीज़ निकल आती है। हमारा कोई कंट्रोल कोई, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं की गई, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, प्लान इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें दो बंदों के आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं यूज़ की गई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर जारी बात है यही रिजल्ट्स आएंगे। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं देखते, झुकना झुकाना, इसका आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे रिश्तों को लंबा चलाया जा सकता है। मैं कैसे 25-30 साल से वो 8-10 रिश्ते चला रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। एक दूसरे को ये देखना चाहिए उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका स्किल सेट कौन सा है जिसमें वो आपसे बेहतर है। हर आदमी जिस मैं रिश्ते में हूँ उसमें से वो इंसान मेरे से उस काम में बेहतर है। वो काम का कंट्रोल उसको देना है, उसको लीड करना है, आपको फॉलो करना है। उसको भी इतना स्मार्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में लीड कर सकते हैं और आपके किस में रिजल्ट हैं, वो वाला पोर्टफोलियो आप ले लें। दोनों बंदों को अपना अपना क्या हो गया, रोल डिफाइंड हो गया। ये रोल डिफाइंड जब हो जाते हैं चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, चाहे घर में, चाहे कंपनी में, चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर इसको आप डालेंगे। उसके बाद फिर आता है कलेक्टिव काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना उन चीज़ों में जिसमें वो कमज़ोर हैं। वो आपसे सीखेंगे, इस काबिल समझेंगे। बाहर से जाकर वो सीखने की कोशिश करते हैं, अपने से नहीं सीखते। उस चक्की की कोई इज्जत नहीं करते जिसका पीसा हम खाते हैं, और बाहर से हम जो है ना हर बंदे से विजडम लेके आ जाते हैं और वो चीज़ें हमसे होती नहीं हैं। ये बड़ी खूबसूरत इसमें पंजाबी की एक शेर था, किसी और दिन आपको सुनाऊंगा मैं। तो ये आपने समझना है कि और आपने रिश्ता बनाया है, इसमें रहना है और लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म सोचेंगे, रोज़ एक नया बंदा आपके सामने खड़ा होगा, रोज़ एक नई चीज़ आप बनाएंगे। तो लॉन्ग टर्म चीज़ बुनियाद मजबूत करनी है, उसके ऊपर काम करना है, अपने पे भी काम करना होता है। कॉन्शेंशियस जो आदमी होता है ना, जो माइंडफुल होता है, जो जागा हुआ इंसान होता है, कॉन्शियस बीइंग जो होता है, वो रिश्ते में अपने पे भी काम करता है, दूसरे पे भी काम करता है और रिश्ते पे भी काम करता है, प्रोवाइडेड दूसरा इंसान उसके साथ चलने की कोशिश करे जिस काम में वो अच्छा है, और उस काम को करे जिसमें वो खुद बेहतर है, और उसको लेकर आए और उसमें फ़ायदा दिखाए किसी दूसरे इंसान को, और कभी कंपेटिटिव ना हो, और कभी दिमाग पे काम करना है। कल मैं किसी को कोई बात समझा रहा था कि देखें, अक्सर वो कहते हैं सर आप जज्बात के बड़े ख़िलाफ़ हैं। तो मैंने कहता हूँ मैं बिल्कुल जज्बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जज्बात ही रोबोट को इंसान बनाते हैं, जज्बात ही इंसान को मोमिन बनाते हैं, ईमान वाला बनाते हैं। जज्बात जिसका ताल्लुक हमारे दिल और दिमाग दोनों से, वही इंसान से कनेक्ट करके वही रूह के अंदर का जो स्पार्क है उसको सप्लीमेंट करते हैं, ऑगमेंट करते हैं, उसी से रिजल्ट हासिल किए जाते हैं। लेकिन जज्बात बिरयानी में नमक की तरह है, खूबसूरत कर देंगे, अच्छे से अच्छी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, परफेक्ट वो लग रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, एरोमेटिक है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं पाएंगे आपके, नमक नहीं है उसके अंदर। और कई लोग जब इस नमक को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो इसमें दोबारा इसको कम नहीं किया जा सकता, वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो अगर कम होगा तो थोड़ा सा डाल देंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो जज्बात के बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। उस बादशाह के बेटे ने बिल्कुल यही कहा था कि मैं आपसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं नमक से करता हूँ। बादशाह को बात बहुत बुरी लगी, बाकी कह रहे थे जैसे मैं हीरो जवाहरात से करता हूँ, पावर से करता हूँ, रब से करता हूँ, हर एक चीज़ से मिलाया गया लेकिन नमक से नहीं। तो बिल्कुल बाद में पता चला कि वो नमक बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो इसी तरह चीज़ों को समझना और छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनकी तरफ बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जज्बात, मोहब्बत, इमोशन कहते हैं जज्बात को। जज्बात वर्ड कहाँ से बना है, जज्बा है तो आपके अंदर यू फील अलाइव, तो उसी से जज्बात बने। तो इमोशन क्या है, मोहब्बत। इमोशन क्या है, किसी की इज्जत करना, किसी का मुकाम किसी को जहन में देना। ये फीलिंग्स जो हैं हमारी वो एहसासात हैं, वो जज्बात नहीं हैं।
इसीलिए

0: डिफरेंट वर्ड्स बनाए गए हैं लोगों को इन चीज़ों को एक्सप्रेस करके समझ सकें। एक थॉट आपके जहन में पैदा होती है। अब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, ये आपका उसके लिए जज्बा है, इमोशंस है। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ वो ये है कि जब आपसे बंदे से मोहब्बत हो गई, बंदी से हो गई, रिश्ता बन गया, काम से मोहब्बत होगी, पैशन से मोहब्बत होगी, अब जज्बात आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, अब आपका दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है कि इस जज्बे को लंबे अरसे तक कैसे रखना है, इस रिश्ते को कैसे बना कर रखना है, इसमें से कैसे इसकी खूबसूरतियाँ आपके अंदर ट्रांसलेट होंगी, इसको कन्फर्म करना है। और वो जब भी कोई वीक थाट या नीच थॉट आपके जहन में आती है उस पर अमल नहीं करना है। वो एक थॉट है आपके जहन में जो आई है, बैकग्राउंड की वजह से आई है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आई है, चाह की वजह से आई है, चाहे जाने की वजह से आई है, इसके बदले किसी चीज़ के आप लेना चाहते हैं उसकी वजह से आई है, वो उठानी नहीं है, उसको फीलिंग नहीं बना, उसको फीलिंग नहीं बनाना है, वो मेयर थॉट है। अपने जज्बे से आपने जुड़े रहना है और आप देखेंगे थोड़े से वक्त के बाद आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। जो जल्दी में कोई आपने जज्बाती होकर कोई ऐसा स्टेप नहीं ले लेना कि बनी बनाई मोहब्बत, बना बनाया दोस्त, बना बनाया काम बिगड़ जाए। हमारे लोग अपने रिश्ते हॉर्मोन्स की वजह से बर्बाद कर देते हैं, अपनी पुअर इम्पल्स कंट्रोल की वजह से बर्बाद कर देते हैं, एकदम बोल पड़ने की वजह से बर्दाश्त कर सकते हैं, चुप रह के देख लें थोड़ी देर। साइंस आपको बताती है कोई भी इम्पल्स, कोई भी यूफोरिक कॉल जिस पे आप गिव इन करते हैं वो 15 से 20 सेकंड सिर्फ दबानी और बर्दाश्त करनी होती है, उसके बाद चीज़ें आपके इख्तियार में भी आ जाएंगी। आपको समझ लग जाती है कि ये कितनी स्टूपिड थॉट है और मैंने कितनी गलत बात की और मुझे कितना अफसोस हुआ, अगले बंदे को कितना अफसोस होगा और मुझे वो मुकाम कैसे मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये वो वीक थॉट्स को फीलिंग एहसास बना लेना और अपने जज्बे को या जज्बात को ख़राब कर लेना, इसके खिलाफ हूँ मैं। जज्बात के कोई ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, वो इंसान को इंसान बनाते हैं, उसी के दिल में वलवला पैदा करते हैं, उसी से रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ। उसने कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ। बाद में पता चला कि ना वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं न्यूरॉन्स तकरीबन 40,000, तो वो भी उसमें भी थॉट्स और उसमें भी फीलिंग्स हैं, तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको जब आप ऐसे सोचेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का अख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: The status of a Muslim woman in Islam. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her father. When she is a wife, she completes half of the deen of her husband. And when she is a mother, Jannah lies under her feet.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Central Bedfordshire College ab September 2026 se shuru hone wale accredited hum Luton mein child care, ESOL, English or Maths, employability hame apply karne mein aapki madad karne ka mauka dein. Aap 26 August se har budh subah 9 baje se dopahar 3 baje ke darmiyan Delo Community Center LU1 1TB ya Upper George Street mein Thrive Hub LU1 2QX par humse mulaqat kar sakte hain. Puri umar kaam aane wali ye qualifications hasil karke tar banane ke liye abhi apply karein.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
11: You could offer a quality service that really is second to none.
12: Or you could have offers that are simply unbeatable.
10: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
13: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
10: Has it clicked yet?
13: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
15: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Nice of you. Thank you very much. Bahut hi khoobsurat thought diya. Dusri mere paas hai. Main uske baad baat karunga. Radio Azad, you're on the air.
16: Hello.
0: Hello.
16: जी अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम
16: अच्छा सर मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने अभी थॉट्स की बात की और आपने बात की कि जो नेगेटिविटी आती है आपके दिमाग में उसको अपने ऊपर सारी नहीं करना चाहिए राइट तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन दैट केस अगर दो बंदे एक रिलेशनशिप में हैं या उस तरह का रिलेशनशिप मीन्स के दे आर थिंकिंग दैट दे आर इन सम इमोशनल रिलेशनशिप या कुछ ऐसा ठीक है पसंद करते हैं या कुछ ऐसा तो उस वक्त भी तो नेगेटिविटी भी आती है पॉजिटिविटी भी आती है और फिर एक बंदे को लगता है कि दैट अदर वी डोंट हैव द कंपैटिबिलिटी या इस तरह उसमें आप क्या कहोगे
0: अच्छा नाइस ऑफ यू मैम थैंक यू वेरी मच सवाल बहुत अच्छा है जैसे अभी आपने कहा अब सवाल ये था कि दो बंदों एक रिश्ते के बीच में है उसमें भी पॉजिटिविटी आती है नेगेटिविटी आती है मैं एक्चुअली उसी के बारे में इससे पहले भी वही बात कर रहा था कि ये ऊंच नीच आती रहेगी इसमें आपने जो थॉट्स आपके जहन में आती हैं थॉट्स किन चीज़ों से आती हैं बाय द वे थॉट्स आती हैं जो आपने देखा है पास्ट में देखा है, जो आपने किया है, जो आप अभी कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से मिलकर आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है, धमाके होते हैं, और उसमें से आप का आपके अंदर जो डोमिनेटिंग साइड है आपकी, अगर आप दुखी रहने वाले लोग हैं या दुखी रहने वाले इंसान हैं तो फिर आप दुखी थॉट्स उठाएंगे। जैसे गाने होते हैं, कुछ लोगों को दुखी गाने पसंद होते हैं, रीज़न उनके पास कुछ नहीं होता, उनको हैप्पी हैपनिंग हिप किस्म की चीज़ें नहीं पसंद होती। चॉइस आपकी अपनी होती है, इस चॉइस के पीछे बैकग्राउंड में जाके पता चल सकता है कि ऐसी चॉइस क्यों है, क्यों आप इस तरह सोचते हैं, क्यों आप इस तरह के हैं, और दूसरे लोगों को भी आप उसी तरह सोचवाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका एक फिर और बड़ा लंबा एक प्रोसेस है इसका। तो आपने ये देखना है कि थॉट जब आई है उसमें से जो पॉजिटिव थॉट है, जो 10 times ज़्यादा स्ट्रांग है, वो थॉट आपने उठानी है, और वो थॉट जो कंड्यूसिव है रिलेशनशिप के लिए। दूसरा आपका इसमें ये पॉइंट बन सकता था कि एक बंदा अगर ये वाली थॉट उठाता है और उसकी फीलिंग बनाता है और इस तरह आता है रिश्ते के अंदर, तो दूसरा बंदा अगर ये काम नहीं करता तो फिर क्या करें। फिर रब ने ये आपको बताया समझाया है, इल्मुल बयान आपको कम्युनिकेशन सिखाई है, आप प्यार से बात करके समझा कर रीज़न एंड लॉजिक देकर समझा सकते हैं, उसको हेल्प की जा सकती है, आप अपने एक्शन से आप लीड कर सकते हैं, पहले आप करके दिखाएंगे फिर दूसरा बंदा करेगा, इस तरह करते करते आप उनको आहिस्ता आहिस्ता, अगर इंसान के पुत्र हैं वो, तो ये सारी चीज़ें उनको समझ आ जाएगी और वो साथ साथ चल के, पहले अगर उन्होंने नहीं देखा तो अभी देख लेंगे, पुरानों के बिल जो हैं वो आपके ऊपर नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि जिस उम्र में हम हैं इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखकर सुनकर समझकर आ चुके हैं, हर आदमी को यही लगता है कि उसको बहुत पता है। दूसरी बात कि वो बंदा मेरे मुताबिक क्यों नहीं सोचता, देखें गौर से ये बात सुनिएगा, आपकी जो आँख है ना, ये कलर इस वक्त जो मैंने पहना हुआ है ना, आपको ये कलर उस तरह नज़र आ ही नहीं सकता जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बेहतर देख सकता हूँ, इसका मतलब ये है ब्रेन के अंदर जो जगह है जो कलर को प्रसीव करती है, मेरी आँखों का जो कलर है, ये तमाम चीज़ें मिलकर, वो लाइट जो इस वक्त पड़ रही है या नहीं पड़ रही, जिसको आप देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, वो सब का सब मिलकर जो कलर बना रहा है, दूसरा इंसान वो कलर नहीं देख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरे इंसान को इस कलर के नज़दीक नज़दीक ज़रूर दिखाया जा सकता है, अगर ये ब्लू है तो उसको ब्लू नज़र आ सकता है, और कलर ब्लाइंड बंदे को जो भी स्पेसिफिक रीजंस अभी मैंने बताए हैं उसके मुताबिक कभी ये कलर नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसको ये ग्रीन नज़र आता है तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो बिल्कुल ऐसे रिश्ते कई होते हैं, एक ही चीज़ है, दो डिफरेंट एंगल से देखने से, एक टेबल पर 6 लिखा हुआ है, मुझे वो 6 नज़र आ रहा है, उस तरफ बैठे हुए बंदे को 9 नज़र आ रहा है, गलत वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कैसे इसको फिगर आउट करेंगे, उसको मैं कैसे इस तरफ लाऊंगा, या मैं कैसे वहाँ जाकर देखूंगा भाई इसको 9 नज़र आ रहा है, तो फिर उसको समझाया जा सकता है कि ये चीज़ कैसे, और वो भी अंडरस्टैंड करेगा। अगर उसका कौवा सफ़ेद है तो फिर कुछ हो नहीं सकता उसके लिए, फिर आपको, फिर आप दो बंदे कमरे में बैठे हैं और एक स्टूपिड नहीं रहा, फिर दो हैं, और लंबे अरसे तक अगर आप ये काम चलाएंगे और इनसे अगर आप कोई और चीज़ पैदा करेंगे तो फिर यही हालत ऐसी ही रहेगी और फिर ये कभी चीज़ें सीधी नहीं होंगी। इसीलिए कंपैटिबिलिटी का कहा गया, इसीलिए कहा गया कि खानदान देख लो, इसीलिए कहा गया कि सोच देख लो, रहन सहन देख लो, कंपैटिबिलिटी फाइनेंशियल देख लो, ये 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। इसके लिए दीन देख लो ताकि राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और कुछ एक्शंस जो आप लेते हैं वो एक जैसे रहें ताकि ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, ताकि जब आप कोई ऐसी चीज़ या ऐसा बंदा या ऐसा रिश्ता बनाते या सिलेक्ट करते हैं, ये पहले सोचने की चीज़ें। फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है जी पहले हमें नहीं पता था, जैसे खलीक कुरैशी साहब कहते हैं आज़ाद जी आप हमें 80 साल की उम्र में मिले तो अगली 10 साल में ज़िंदगी बदल गई मेरी, पहले मिल जाते तो और बहुत कुछ हो जाता। तो लेकिन उनकी ज़िंदगी बदली क्योंकि मैंने जो कुछ उनको बताया उन्होंने एज इट इज़ अप्लाई किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरी 30 साल का ये एक्सपीरियंस है, 40 साल का वो एक्सपीरियंस है, मैंने दुनिया देखी है, आप अभी छोटे हैं, कम उम्र हैं, फ़लाँ हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनकी ज़िंदगी के 4 बड़े मसाइल थे, 4 पर मैंने सिर्फ एक दफ़ा उनसे कहा, अगले दिन उन्होंने अप्लाई किया, 1-2-3 सालों में वो सब ख़त्म हो गए, एंड ही वॉज सो ग्रेटफुल, मैंने उनसे ज़्यादा किसी इंसान को ग्रेटफुल नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। आज भी जब वो अल्जाइमर का शिकार है, इज़ 94 years old, आज भी जब वो मुझसे मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं आपके मुझ पे बड़े आसान हैं, मैंने, और कभी उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊँगा। और एक 85 साल का बंदा एक दिन मुझे कहता है आज़ाद आई वॉन्ट यू टू मूव इन विद मी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं कैसे मूव इन हो जाऊँ, तो मैंने कहा क्यों, तो आगे से कहते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू। बिकॉज यू आर प्रेशियस. तो मैंने कहा सर मैं आपकी आधी उम्र का हूँ, मैं मतलब आपका मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए, आप मेरे लिए खाना बनाते हैं, शौक से मुझे बुलाते हैं, मैं आपकी कंपनी इंजॉय करता हूँ, हम मिलकर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, देखते हैं सुनते हैं उसके बारे में बात करते हैं, मैं आपसे इतने एक्सपीरियंस इतना को लेता सीखता हूँ. तो ये आपका काम नहीं है करना, और जिस उम्र में आप हैं कुछ दिन आप मेरा काम करेंगे, फिर मैं आपके काम करता रहूँगा, और उसके बाद चीज़ें मसाइल का शिकार हो जाएंगी, फिर भाभी बच्चे बाकी लोग यू नो एक मसला एक बन जाएगा. तो हर बंदे का अपना तरीक़ेकार होता है बात करने का, चीज़ों को समझने का. जब आप फॉलो ही नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ को, ईमान ही नहीं है आपका. जब देखें ईमान के बारे में एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मेरे से बहुत लड़ते हैं ईमान के बारे में, एज इफ मैंने ठेका लिया हुआ है रब वाली साइड को क्लियर करने का और मैं वकील हूँ उनका. ना हमारी इतनी औकात है ना मजाल है. मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ और ये मैं साबित कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी से और अपने इर्द गिर्द से और हुज़ूर पाक की इस बात से कि जो इंसान रब का शुक्रगुजार नहीं है वो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता. बिल्कुल इसी तरह जिस आदमी में फेथ है ही नहीं, बिलीव ही नहीं है उसका, वो इंसान जो 25-30 साल से उसके साथ रह रहा है वो उस पे देख कर सुन कर उसके एक्शन और उसके रिजल्ट के बावजूद उस पर ईमान नहीं ला रहा, और उसके जहन ने उसको कौन किया हुआ है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और जिसने सब करके दिया वो नहीं है. ऐसा बंदा रब पे मुझे कह रहा है जिसको मैंने देखा ही नहीं मैं उस पर बिलीव कर लूँगा, और कहीं पर भी उसकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता कि रब पे बिलीव है, ना सब्र है, ना तवक्कुल है, ना शुक्र है, ना जब मुश्किल तकलीफ वक्त आती है स्टैंड ले सकते हैं, ना किसी के साथ स्टैंड ले सकते हैं. तो कहाँ है रब हमारी ज़िंदगी? तो फेथ अगर नहीं है तो इंसानों पर भी नहीं, सच्चाई अंदर नहीं है तो नज़र भी नहीं आएगी, अच्छाई भलाई अंदर नहीं है तो हर एक पे शक रहेगा, झूठे को सब कुछ झूठ लगता है, शराबी को लगता है सब पीते हैं सिर्फ बताते नहीं छुप कर पीते हैं. मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इस तरह सोचते हैं, जो खुल के बोलते हैं कम से कम रब के मेरे पे इतनी मेहरबानी ज़रूर है कि ये दुआ करने के बाद कि ऐ मेरे रब मुझे चीज़ों की असल हकीकत का इल्म दे. लोग खुल कर मुँह से बोल देते हैं चाहे बड़े से बड़ा काम हो, कत्ल क्यों ना हो जाए और बड़े जालिम और गुनाह और मतलब ना हो जाए, चाहे कबीरा हो या सगीरा, क्योंकि कम्युनिकेशन के बग़ैर डॉक्टर को या वकील को काम बताए बग़ैर आपकी मर्ज़ी नहीं हो सकती. तो ये वो तमाम चीज़ें जिसमें साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग से होना है. चाह से कुछ नहीं होता, चाह आपके अंदर सिर्फ बेचैनी पैदा करती है अगर, तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो आपकी नहीं बनती. आप इज़्ज़त वाले काम करते नहीं और आपकी चाह ये है कि आपकी इज़्ज़त अफजाई हो. आप कदर कराने वाले काम नहीं करते और आप चाहते हैं कि आपकी कदर बड़े लोगों की नज़र में, तो उसी वक्त एंग्जाइटी स्ट्रेस शुरू हो जाएगा आपको, बिकॉज आप उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं ले रहे. प्लान कहाँ है, रिजल्ट्स कैसे आएंगे? दीवाने के ख्वाब में आखिर में दीवाने को वो मिलता नहीं है जो उसको दिखता है या वो दिखाता रहता है खुद को, वो एक हवा सा होता है. लेकिन ख्वाब वो जो आपको सोने ना दे, अक्सर तो लोग आपसे कहते हैं, लेकिन ख्वाब वो जिसके ऊपर आप जब चलें हर वक्त हर सांस हर लहजा उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, खिलवत में हैं, जलवत में हैं, लोगों के साथ हैं, अकेले में हैं, कुछ सोचते हैं, डायरेक्शन आपकी उस गोल की तरफ है जिसमें आप जा रहे हैं, एंटरटेन करें, खुश रहें, जो मर्ज़ी आप करते हैं, कोई भी चीज़ आपको बेचैन नहीं करेगी क्योंकि आप उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिसकी मंजिल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप हिट करते जा रहे हैं और स्ट्रेस कम होता जा रहा है, मोटिवेशन बढ़ती जा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है. लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से आप अपने साथ नहीं रख रहे, वो एफर्टलेस ईज से साथ चल रहे हैं. ज़ोर ज़बरदस्ती एग्जॉस्ट कर देगी. दूसरे बंदों की विल आपके इख्तियार में नहीं है, इसीलिए फ्री विल है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. दूसरे क्या सोचें, क्या करें, कैसे करें, ये आपका और मेरा करने का काम नहीं है. इवन पैगंबर को कहा गया आप क्यों दुखी होते, आपका काम सिर्फ पैगाम देना है, उसके बाद जो जिसने किया, जो जिसकी एफर्ट, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की. कोई मेहरबान हमारे साथ करते हैं उनसे बात. रेडियो आज यू ऑन द एयर.
17: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
17: क्या हाल है? तो सुना
0: अल्लाह तक करम सो क्या जो
17: शुक्र है अल्लाह. अच्छा कुछ
0: उसने एक गल नोट की थी, इनको बोलने वाले सारे मुझ अथरे और देखें, और हिंदू को कमाल जबान है. अब मुच जब हम कहते हैं ना इसका मतलब है बहुत, और हिस्पैनिक्स कहते हैं मूचो ग्रासियस. तो ये सारे वर्ड, ये सब कुछ है, ये बंदों ने सब फ्रॉड किया हुआ है, ऐसे वर्ड्स निकालते हैं उसको हिलाते जुलाते हैं उर्दू हिंदू को पंजाबी वाले और कहते हैं जी ये इसका लफ्ज़ है ये उसका लफ्ज़ है, मिक्स करके सारी बातें एक जैसी हैं. جیسے ہم نے رب کو مختلف مختلف نام دے کے الگ الگ ڈاکخانے بنائے، الگ الگ لڑائی جھگڑے بنائے، اور رب وہی ہے، تو نام کچھ بھی رکھ لیں آپ اس کا.
17: کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی.
0: کریے نا.
17: اچھا تو گھر میں دیسی ہونے کے ناطے ماں کا جو رول ہوتا ہے بیسکلی روبوٹک اسٹائل، اور اس میں وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں بہت ہیلپ کرتی ہوں.
0: ایک منٹ میرے ساتھ ہولڈ کرنا ہے، ایک مہمان کو ہم نے آن ایئر رکھا ہوا ہے اور وہ اس وقت آسٹریلیا سے کال آ رہی ہے، پہلی واٹس ایپ کی کال ہے، مجھے ان کو لینا ہے. ریڈیو آزاد یہ رون دیا. ہم سب کو یہی صبر شکر سیکھ رہے ہیں. دیر ادر پیپل آلسو ویٹنگ ان دی لائن، اور کچھ کو میں ڈراپ کر دیں گے، اور باقی آہستہ آہستہ ہم سب ایک دوسرے صبر کر کے سیکھیں گے. میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں گے. اینڈ یو نو پیپل پٹ اپ ود اس فار لانگ، سو وائی ناٹ. جی
18: سر، دو چیزیں ابھی آپ کی باتوں سے، جو ایک چاہ کی بات کر رہے تھے اور رب کی بات کر رہے تھے.
0: جی.
18: اور میں نے بیٹھے بیٹھے انٹرنلی ریئلائزڈ سو مچ، لائک چاہ، آئی ہیو بین فائٹنگ فار ایجز ٹو بی اوتھینٹک.
0: جی.
18: بٹ وہ میری چاہ اتنی اسٹرانگ تھی دیٹ آئی فورگٹ ٹو ٹیک دا پاتھ وچ وڈ ٹیک می ٹو ورڈز بینگ اوتھینٹک. آئی جسٹ کانسنٹریٹڈ سو مچ آن بینگ اوتھینٹک، میں اپنے اندر جھانکنا ہی بھول گیا.
0: آپ نے اینڈ دین میرے ساتھ ایک بات تھوڑی سی بیچ میں آپ کو اس کے بارے میں بات بتانا چاہوں گا. ایک مووی ہے، ضرور دیکھیے گا، دا بک آف ایلائی، ڈینزل واشنگٹن کی فلم ہے. اس میں اس بندے کے پاس بائبل کا ایک ہی نسخہ، ایک ہی کاپی رہ جاتی ہے، اور اس کو لے کے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ، اور اس کے لیے ویلن جو ہوتا ہے وہ پاور بن چاہنے کے لیے، اوتھینٹک ہونے کے لیے، لوگوں کو اپنے یو نو سبسروینٹ کرنے کے لیے اس کو وہ کتاب چاہیے ہوتی ہے. اس نے سارے بندے اپنے بھیجے ہوتے ہیں ہر طرف سے، اور یہاں پہ ایک بندہ جو کہ واریئر ہوتا ہے اس کتاب کو پروٹیکٹ کر کے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دیتا ہے. اور آخر میں جب وہ کتاب وہاں پہنچ جاتی ہے، جہاں اس کو پریس میں جہاں پہنچ جانا چاہیے، تو اس فلم کی آخری لائنز جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اسی لیے جو میں ابھی اپنی فلم لکھ رہا ہوں اس میں آخری لائنز میں بڑے پاورفل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تھاٹ پرووکنگ ہوں، لوگ اس کے بارے میں کچھ سوچیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ آئی واز سو کاٹ اپ ان پروٹیکٹنگ دا بک دیٹ آئی فورگاٹ ٹو ڈو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی واز سپوز ٹو ڈو، اینڈ دیٹ از ٹو لیو بائی دا بک. مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے ابھی آپ نے کہا نا، میں اوتھینٹک بننے کے لیے فائٹ کب سے کر رہا ہوں، اور میں اوتھینٹک ہو نہیں پا رہا، اور میں بار بار وہ ہدف گول جو ہے وہ مس کر جاتا ہوں. پہلی چیز جو آپ کو کرنی چاہیے وہ ابھی تک آپ نے نہیں کی، اسی لیے اس چیز کے ساتھ آپ سٹرگل کر رہے ہیں، اور وہ ہے سٹاپ فائٹنگ. اسرائیلائٹس جو ہے نا، اسرائیل بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہے دا ون ہو ریسلز ود گاڈ، بیکاز دے ور سو پاورفل، اور اپنی ول کے ساتھ، کہ رب کی ول کے ساتھ لڑنے کو دا ون ہو ریسلز ود گاڈ. اور اسلام کہتے ہیں دا ون ہو گیوز ان ٹو دا ول آف گاڈ، تسلیم کر لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے. جب آپ چیز کو اسٹرگل کرنا بند کریں گے، زور لگانا بند کریں گے، شاعری زور زبردستی زور سے نہیں نکلتی، زور لگانے سے کافیہ ردیف نہیں ہوتا، اس میں اپنے آپ کو صرف سکون میں رکھنا ہوتا ہے اور برین ویو ایک آتی ہے اس کو پکڑنا ہوتا ہے. آرٹ ورکس زور لگانے سے نہیں پیدا ہوتے، کوئی بھی خوبصورت نفیس، کیونکہ آرٹ ورک نفیس کام کو کہتے ہیں، ڈیلیکیٹ کام کو کہتے ہیں. کوئی بھی چیز جو ڈیلیکیٹ ہوتی ہے وہ زور لگانے سے نہیں کی جا سکتی. شاعر کہتا ہے نا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو بالکل اسی طرح اس کو ڈیلیکیٹ چیز کو، ریفائن چیز کو زور زبردستی سے نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف محسوس کرنا ہے، احساس کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑنا ہے. اوتھینٹیسٹی خود بخود آ جائے گی، زور لگانے سے، اپنے آپ کو بیٹ اپ کرنے سے نہیں آئے گی. آپ ایک پاتھ کے اوپر ہیں، اس پیتھ پہ آپ نے گول بنایا ہوا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز آپ نے بنائے ہیں، وہ آبجیکٹیوز آپ ہٹ کرتے جائیں گے، اور اکثر نہیں ہٹ ہو رہے ہوں گے. وہاں پر اپنے آپ کو بیٹ اپ نہیں کرنا ہے. آپ تو اچھے آدمی، آپ پہلے سے کوشش کر رہے ہیں، کنڈیشننگ آپ کو توڑ رہی ہے، انوائرمنٹ آپ کو توڑ رہا ہے، तो आप ये सब आपको तोड़ रहे हैं, लोग आपको तोड़ रहे हैं, सेट ऑफ बिलीव्स आपको तोड़ रहे हैं, आप खुद भी खुद को तोड़ रहे हैं। तो ये नहीं करना है, वो तोड़ रहे हैं, आपको जोड़ के रखना है और इस पर अपने आप को ठंडा रखना है। हो जाएगा, कर रहा हूँ कोशिश, और मुस्कुराना है। इस दफ़ा फिर फेल हो गया हूँ, गुस्सा तोड़ना चाहता हूँ मैं अपना, गुस्सा नहीं करूँगा क्योंकि गुस्सा हराम है, क्योंकि ये अकल को खा जाता है, क्योंकि इससे आदमी की सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इससे लोग स्टंट हो जाते हैं, अपने आप को रिजिड बना लेते हैं, लॉक कर लेते हैं खुद को। ओके, प्यार से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, अपने साथ भी उसी तरह कहना है कि जिस दिन गुस्सा आया बाद में कुड़ता है, क्यों आया, किस एनवायरनमेंट क्यों आया, क्या किया मैंने, उसने क्या किया, मेरा क्या गलत था, उस पर मेरा कंट्रोल है नहीं, मुझ पर है, हाँ है, कैसे बदलूंगा, अल्फाज कौन से बदलूंगा, कम मिल लूँगा, कम अब जब तक मैं इस काबिल नहीं होता आगे नहीं जाऊँगा। बिल्कुल एलर्जीज़ की तरह, जैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ 30-40 साल से, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एलर्जीज, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एस्मा, आई ऑलवेज थॉट आई हैड नो प्रॉब्लम विद ADHD, कुछ नहीं था, मुझे पता था मैं एक दिन इसमें से निकल आऊँगा। जब तक मैं जोर लगाता रहा, कुड़ता रहा, मैं क्यों, दुखी होता था, जब मुझे समझ आया मैं ही कर सकता था, इसलिए कि बाकी सब कुछ जो मुझे मिला है उसके साथ ये चैलेंजेस हैं, इसको एक्सेप्ट करो, ढीला छोड़ो खुद को, वक्त के साथ ये चीज़ें ठीक होंगी। और फिर एक वक्त आया, स्टैमरिंग भी ख़त्म हो गई, एज़मा भी ख़त्म हो गया, एलर्जी बहुत कंट्रोल में है, सांस नहीं बंद होता है, चीज़ें आराम से सारी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं। ये करते करते एक स्ट्रेंथ बिल्ड होगी अंदर, माइंड में, माइंड ओवर मैटर वाली, जिसने मैटर के ऊपर कब जो फतह हासिल कर ली, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को एक्सरसाइजेस कर करके कमज़ोर था तो वो भी उसकी ने भी स्ट्रेंथ पकड़ ली, बाकी सारे वाले देयर फॉलिंग अपार्ट, खुल रहे हैं सारे के सारे हमारे इर्द गिर्द। लेकिन वो मुसलसल करने ही असल काम है, कंसिस्टेंसी, एक चीज़ के ऊपर कन्वर्ज कर देना तमाम चीज़ों के, और उसके बाद नहीं होता तो फिर गो ईजी ऑन इट, फिर उन लोगों से हेल्प लेना, उस एनवायरमेंट से हेल्प लेना, उन बातों से हेल्प लेना, उन वर्ड से हेल्प लेना, उस किताब से हेल्प लेना, उस माहौल से हेल्प लेना जो आपको लगता है कि आपकी साइड का है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहाँ से लेंगे, लेते रहना और फिर एनर्जी साथ साथ देते रहना, ये पूरा एक प्रोसेस है मेरी जान। जब आप ये करोगे आपको पता ही नहीं चलोगे चलेगा, अब यू विल बी लाइट एज अ फेदर वन डे। स्टूडेंट जब तैयार होता है तो टीचर अपीयर होगा, आप जब अपने आप को ढीला छोड़ेंगे तो आपको जोर लगाने से चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मैं भी ये करता रहा हूँ 30 साल, इसलिए बता रहा हूँ, बाद में आपको समझ आ जाएगी कि सब कुछ दिखता है, सब नज़र आता है। आवाज़ें 30-30, 40-40 साल पुरानी याद रहती हैं, मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वर्ड जो वो वाली ख्वाहिशात और बातें जो आप चाहते हैं कि आपके जहन में रहें वो पक्की हो जाती हैं, बाकी जहन से महव हो जाती हैं जो आपको कमज़ोर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझे मिलनी शुरू हो जाएंगी, नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, नहीं भी मिलती हैं, आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑन दिस पैथ, आई एम हैप्पी दैट मैं जब रात को सोता हूँ मेरा कोई मकसद होता है, कोई प्लान होता है, सुबह उठ के मैं किसी काम पर लगता हूँ, मेरे इर्द गिर्द 2-4 लोग हैं जो मेरी इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, नहीं भी करते वक्त पर करेंगे कर लेंगे, मैं उनके लिए अच्छा सोचूंगा, मैं उनको घर से निकलता हूँ उनको कुछ देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि देने वाले ने मुझे ऐसा बनाया है तो मेरे अंदर उसका स्पार्क है, मेरे अंदर लेने वालों का स्पार्क नहीं है, देने वाले का स्पार्क है, तो मैं गिविंग पे कैसे ध्यान दूँ, अगले खुद ही गिव करने आ जाएंगे, गिव इन भी कर देंगे, गिव अप भी कर देंगे, गिव भी करेंगे, रेसिप्रोकेशन भी शुरू हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये सब करने में 25 साल लगे हैं, तो इसीलिए मैं किसी भी बंदे को जब वो रास्ते में, बहुत जल्दी लोग थक जाते हैं, थकना नहीं, अक जाते हैं, अकना नहीं, और बार बार एक ही रिजल्ट देख के पक जाते हैं, पकना नहीं है, ढीला छोड़ना है, चीज़ों के ऊपर काम करना है, हर दफ़ा मुस्कुराना है जब भी गड़बड़ हो जाएगी, रिएक्शन बदलेंगे तो आपके एक्शन आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे। हमारी सारी ज़िंदगी रिएक्शनरी है, एक्शंस तो बहुत बाद के आते हैं, इम्पल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, इसमें बेहतर होना है, इसमें अपने आप पे काबू पाना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। रोना आता है तो आंखों से आंसू आने चाहिए, मैंने आज तक कभी अपने आंसू रोके हैं, मैंने आपसे 10 साल पहले कहा था जब भी मेरी आवाज़ तब सिर्फ कमज़ोर होती है या गुलूगीर होती है या मुझे जैसे मेरी आंखों में जैसे कोई बंदे की आवाज़ में आंसू उतर आते हैं, वो सिर्फ तब होता है जब मैं रब के लिए ग्रेटफुल होता हूँ, گریٹیٹیوڈ میری آنکھوں میں آتا ہے جب لوگ مجھ سے پیار محبت کی بات کرتے ہیں. آپ مجھ پہ سختیاں کریں, ناراض ہوں, لڑائی کریں, جتنا آپ نے مجھ سے لڑنا ہے میں کبھی نہیں تھکوں گا, نہ میں مجھے کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ میں, اور جو مجھے ایموشن آتا ہے میں اس کو روکتا نہیں ہوں. وہی نظموں میں آتا ہے, وہی محبت جس کو میں دیکھتا ہوں تو آتا ہے. وہ خلیق صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرا جب ہاتھ پکڑتے ہیں پیار محبت کرنے والے لوگ, مرد ہوں, عورتیں ہوں, بچے ہوں, بڑے ہوں, میں دیکھتا ہی نہیں ہوں وہ کون ہے. صرف پیور ٹرانسفر آف انرجی پہ میرے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ویک نہیں سمجھنا ہے, یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ آپ کے اندر رب یہ سب نے اس نے رکھا ہے. آپ کو صرف صحیح وقت پہ, بعد میں یہ بالکل صحیح وقت پہ نکلے گا. کبھی آپ کو کوئی ویک پرسیو نہیں کرے گا. یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی. جس دن انسان ہونا اسٹرینتھ ہے, ایموشنز ہونا اسٹرینتھ ہے, لاجک اور ریزن ہونا اسٹرینتھ ہے, جب آپ ان کو اسٹرینتھ کے طور پہ اپریشیٹ کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے, یہ آپ کے ہاتھ پاؤں بن جائیں گے. یہی پورا پروسیس ہے, اسی کو صرف فالو کرنا ہے. گارنٹی میں دے رہا ہوں, آج تک میں نے جس کو جو گارنٹی دی ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوا ہے, کام پورا ہوا ہے. ڈاکٹر اگر ایک چیز کی گارنٹی دے رہا ہے کہ درد ختم ہو جائے گا, تو اس نے 25 سال تک یہ کر کے خود پہ اپلائی کر کے دوسروں کے اپلائی پہ دیکھا ہے. دوائی صحیح نہیں لی جا رہی, ڈوزز کو ایڈجسٹ کرنا ہے, انوائرمنٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, کون سی چیزوں سے درد بڑھ رہا ہے, کیوں ہے یہ درد, اس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے. اور سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے درد کم ہوگا, آپ کا اصل پرسنالٹی آپ کی باہر آئے گی. ابھی فیئر ہے, ڈر ہے کہ درد پھر ہو جائے گا. ڈرنا نہیں, ہم دنیا میں کشتی بندرگاہ پہ کھڑی ہونے کے لیے نہیں آئی بنی ہے. شپ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہ کھڑی رہے گی بندرگاہ کے اوپر, پورٹ کے اوپر. وہ دریاؤں میں, سمندروں میں جانے کے لیے بنی ہے. وہ ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہوگی, کبھی کبھی گھبراہٹ اور ڈر بھی ہوگا, لیکن وہی کوہنا مشق سیلرز بناتی ہے, وہی وہ بندے بناتی ہے جو ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, جو چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. رب یہی چاہتا ہے انسان سے کہ انسان جو کام فرشتے نہیں کر سکے, جن نہیں کر سکے, اتنے پاورفل ہیں ہم ویک فزیک باڈی کے ساتھ بھی, لیکن ہمارے دماغ کے اندر اور ہماری جو ول پاور ہے اور جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں ان کو بھی نہیں دی گئیں. وہ ایک دن سلولی اینڈ گریجولی وہ ریفائنڈ ہو رہا ہے. ہزاروں سال لگ گئے اس کو ریفائن ہونے میں, تو ہم بھی کوشش کریں گے ریفائنمنٹ کی, اور اگلی جنریشن, ہمارا اسٹوڈنٹ, ہمارے لوگ, ہمارے پیار کرنے والے آگے ہم کو لے کے چلیں گے ان تھاٹس کو, ان باتوں کو. یہ وہ درخت ہے جو 100 سال میں لگتا ہے اور اس کے بعد 1000 سال تک چلتا ہے. تو اس طرح چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا ہے. آئی ہوپ اٹ میڈ سم سینس.
18: سر بہت, ٹو مینی تھنگز گوئنگ آن فار می ایٹ دی سیم ٹائم, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آئی واز ایموشنلی کنیکٹنگ ٹو یو, اور آئی واز لٹل بٹ بزی کلیکٹنگ مائی اون, you know, tears at the same time.
0: Koi masla nahi. I was also doing the same thing. You just couldn't feel it in my eyes because I'm wearing glasses, and inside I was feeling what you're going through also, but at the same, because I have been there. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: धन्यवाद।
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: Hamare ulama kehte hain ki Allah Taala ne mard ko aur aurat ko do mukhtalif qisam ki taqatein di hain. Insaan ko mard ko physical taqat di hai aur aurat ko jazbati taqat di hai, psychologically usko power di hai, control karne ki power di hai, seduce karne ki power di hai, attract karne ki power di hai. तो इन दोनों पावर्स का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादा सलाहियत है उसका वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है. वैसे तो दोनों के पास दो तरह की सलाहियत हो सकती है, बट दिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल रियलिटी. वसारिकु वसारिकतु वज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिद मिन्हुमा मिआ जल्दा. ओके,